जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में।

0: जहां से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियां सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं गगन आपके साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में एक खास हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खास बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। खास बात यह कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है समाचार माध्यम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इसी संबंध में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं, श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनका 2011 से इस पद पर वो आसीन है और अनुभव देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ आज हमें सीखने को समझने को मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो मास कॉम के स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका, बहुत बहुत नमस्कार।
1: सर, मेरी जो मुलाकात है ये आपसे सेकेंड मुलाकात है और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और खुशी इस बात से हो रही है कि तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं आपके जीवन में, और जो आपका अनुभव है उस अनुभव को हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन पत्रकारिता से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ये जो सफर की शुरुआत रही, कैसे रही? अमूमन होता क्या है कि लोग शौकिया बतौर आ जाते हैं या दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे मीडिया क्षेत्र में जाना है, पत्रकार बनना है, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज।
2: गगन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं जानता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि लोग इस तरीके से अपने बारे में कहें और विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों को प्रसारित करें। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरे को पत्रकारिता का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि पत्रकार प्रेस परिषद एक हुआ करती थी
1: जी,
2: तो पिताजी के माध्यम से मैं कभी कभार उस परिषद में जाता था। ताजी सामाजिक कार्य करता थे, तो उन सब चीज़ों में जब मैं देखता था तो मेरा कभी मन करता था कि मैं भी पत्रकार बनूं और मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक उपलब्धि हासिल हो। उस समय मुझे लेखन का शौक था, तो मैं गज़ल, कविता, कुछ कहानियां, इस तरीके की उस समय की चीज़ें थी तो मैं लिखा करता था और बड़ी सराही जाती थी। कई बार कई समाचार पत्रों ने उसको
1: प्रकाशित भी किया।
2: एक पत्रकार थी बहुत पहले, उसका नाम था पांचजन्य, और जो अभी भी है।
1: जी है, जी है।
2: पांचजन्य में भी मैंने काफी लिखा, बड़ी अच्छी उसकी कमेंट्स आते थे। उसके बाद कई ऐसी पत्रिकाएं रही, एक सरिता चला करती थी
1: पत्रिका, जी जी जी,
2: तो उसमें भी एक आपका कोना करके एक वो था, स्तंभ था, उसमें लिखा।
1: तो कह सकते हैं कि एक बीजारोपण उस समय से हो गया आपके जीवन में।
2: बिल्कुल।
1: उसके बाद कब लगा कि मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, मुझे इस क्षेत्र में ही काम करना है?
2: बिल्कुल गगन, ये बात बहुत अच्छी थी कि उस समय जहां लोग अपने जीवन यापन के लिए, हम बहुत सारी चीजों को करते थे और जीवन यापन की में रोजी रोटी की तलाश, ये सब होता रहता था, और उसी बीच मुझे कहीं और क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला। कई क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, और उसके बाद मेरा ये पत्रकारिता का जो मोह था वो मुझे ले आया।
1: जी, इस मोह से मुझे एक बात याद आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रोक कर आपसे वो पूछ लूं
2: जी,
3: क्योंकि आज के समय में जब हम पत्रकार या पत्रकारिता को देखते हैं और फिर एक समय के बाद हम सुनते हैं उन्हीं लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी श्रोता से या किसी पाठकगण से या किसी दर्शक से, कि मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग हो गया है। क्या मैं अगर कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत चीजें बदली है सर
2: जी।
3: तो क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है पत्रकारों की सोच में, पत्रकारिता में?
2: बिल्कुल सही बात है गगन। ये मोह भंग होना या मोह भंग जिसे आप कह रहे हैं उसकी संज्ञा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोह भंग हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो पत्रकारिता है
3: वास्तव
2: वो एक पूजा है।
3: बहुत सही कहा।
2: और पत्रकारिता एक ऐसी पूजा है जहां से आपका मोह भंग कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो हमारे वेद शास्त्रों में पत्रकारों के बारे में जो कहा गया है,
3: नारद जी के बारे में,
2: वो नारद जी के बारे में कहा गया।
3: जी जी जी,
2: नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे।
3: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और नारद जी को अगर कहे कि उनका मोह भंग हो गया, तो जहां भगवान विष्णु स्वयं उन्हें पत्रकारता

0: की प्रेरणा देते रहें या स्वयं वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखें तो मोह भंग कैसे हो सकता है?
1: क्या बात,
0: सीधी भगवान विष्णु की कृपा होती है पत्रकार के ऊपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मेरा अपना मानना है और कई बार मैंने इस विश्वास के साथ मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ।
1: बहुत
0: तो मोह भंग तो नहीं कह सकते।
1: अरे वाह, आपकी बातों में मुझे बहुत एक सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं समाज में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं और धरातल पर कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और होता है, कागज कलम कुछ पर कुछ और होता है, जबकि हम सच्चाई को देख रहे होते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा अनुभवी आदमी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा और आपसे उन बातों को जरूर जानना चाहेंगे जो आपने सारी चीजें देखी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सो लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप सीईओ हैं कुलदीप शर्मा जी। आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या कुछ बात आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफ।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं। आज जिस विषय पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये परिचय सामने आता है तो परिचय कि कोई व्यक्ति मोहताज नहीं रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं पत्रकारिता के बारे में, समाचार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पत्रकारिता के बारे में बात छेड़ी थी, जो कि बात अधूरी रह गई है सर, उसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बात निकल कर यही सामने आती है कि किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे कि पत्रकारिता है क्या।
2: देखो गगन, पत्रकारिता एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, एक बृहद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नारद जी और विष्णु जी, नारद जी द्योतक है पत्रकारिता के, और विष्णु जी की साक्षात कृपा उनके ऊपर रहती है, ऐसे ही हर पत्रकार जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जो संचार माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, स्तंभ की कोई परिभाषा नहीं होती, स्तंभ स्तंभ है। और उसकी मेरी औकात नहीं कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं।
1: जी जी,
2: मैं अगर
1: मैं हूं तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी है और सटीक जवाब आप हमें दे रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जो मेरा सवाल करने का उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट अगर समझें, एक साधारण व्यक्ति समझे कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है, या जो पुराने लोग हैं वो देखते थे कि पत्रकारिता पहले समय में ऐसी होती थी और आज के समय में, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो बिल्कुल पत्रकारिता बदल चुकी है। तो ये इस तरीके से मेरा सवाल करने का मकसद था सर।
2: कोई बात जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन एक मैं वो परिभाषा वाली बात कर रहा था, और इसमें जो आपका और जो आज के समय पत्रकारिता का जो माध्यम है या उसको परिभाषित करने की बात है, परिभाषित आज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो एक जगह से दूसरी जगह के सूचना तंत्र को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और उसके जो बीच के जो कार्य हैं वो पत्रकारिता होती है। आज के समय में लोग, क्योंकि आपका जो कहना है या जो पूछना है
1: जी,
2: वो यही है कि बदल चुकी है,
1: बदल चुकी है,
2: बदला कुछ नहीं है। पहले भी पत्रकारिता ऐसे ही थी, आज भी पत्रकारिता ऐसी है, जो स्वच्छ अपने और दूसरों के विचार हैं
1: जी,
2: उन विचारों को रेखांकित करके
1: जी
2: या शाब्दिक करके
1: जी,
2: उन शब्दों को दूसरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम जो है पत्रकारिता है। आज के समय में पत्रकारिता को हम मानते हैं टीवी चैनल, अखबार, वेब मीडिया
1: जी,
2: समाचार चैनल, ये जो है, या रेडियो चैनल, जिनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं और पहुंचती हैं, आदान प्रदान जो होता है यही है। और अगर इसके अलावा आप और इसको खुल के कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप
1: मेरा मतलब ये था कि सर, ये अगर हम चीजें फिल्मों में भी देखें कि वो चीजें हमें मिलती हैं पुराने समय की फिल्मों में, एक कलम का सिपाही सच उसने देखा और सच लिखने के लिए वो तैयार है, और आज के समय में अगर कुछ उसने सच देखा तो या तो उसकी टीम मैनेजमेंट या कुछ और उसको कुछ और लिखने के लिए शायद कहा जाए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। या टीवी चैनल्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भी खुद एक मीडिया का ही पार्ट हूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितना परिवर्तन आया है, क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं, डिबेट शो हो रहे होते हैं, या दूरदर्शन की बात करें, जो दूरदर्शन बहुत तौर तरीके से डिबेट होती हैं, वहाँ चीखना चिल्लाना नहीं होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कप प्लेट नहीं तोड़ी जाती हैं, या कुछ गाली गलौज नहीं होता है। तो दूरदर्शन में तो हमने बहुत सादगी के साथ डिबेट्स देखी हैं, और दूसरे प्राइवेट चैनल्स में जब हम देखते हैं तो क्या ये टीआरपी का कोई खेल है या क्या होता है ये सर, ये समझना चाह रहा था मैं आपसे क्या होता है
2: ये गगन। एक अपने तरीके का लोगों ने जो हमारे समाचार माध्यम है, समाचार चैनल्स हैं, सबने अपना अपना, देखिए मुझे सादा थाली का भोजन अच्छा लगता है तो मैं सादा थाली का भोजन ही खाऊंगा, लेकिन किसी को उसी थाली में चिकन पसंद करता है तो चिकन खाएगा
1: जी।
2: अन्य इसी तरीके से सबके अलग अलग स्वाद और अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है
1: जी।
2: समाचार चैनल्स में जो समाचार दूरदर्शन हो या प्राइवेट चैनल्स हो, दूरदर्शन में जो कुछ दिखाया जाएगा वो मर्यादित होगा क्योंकि वो उस सरकार के अधीन होता है, उसका सब कुछ सरकार के अधीन होता है। और जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन हाउस है या जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, तो वो अपनी टीआरपी, क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो उनकी कोई खेती तो होती नहीं
1: जी, ये
2: वही उनकी कमाई है, ये वही उनका साधन है, जो फाइनेंशियल जो भी वहां से ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके अपने भी माध्यम है
1: जी जी।
2: लेकिन सच मायने में अगर पत्रकारिता को कहेंगे तो ये पत्रकारिता नहीं कह सकते।
1: क्या बात है, यही सर मैं चीजों को जानना या समझना चाह रहा था। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, या यूं कहूं कि जो एक साधारण व्यक्ति श्रोता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ उन विद्यार्थियों को भी रखना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो कुछ करियर की बातें हैं वो मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, वाकई ये जो वार्तालाप हो रहा है बहुत अच्छी चर्चा हो रही है पत्रकारिता के बारे में, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में, और पुराने समय में जो सर ने देखा, जो आज के समय में वो देख रहे हैं, इसका एक अंतर हम सर से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के सीईओ हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, इसके तहत। और आज हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता के संबंध में बात कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्कॉम के स्टूडेंट हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, विद्यार्थी इस मास्कॉम के बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आकर देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है, जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप शर्मा जी, लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के आप CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मैं सीधे लफ्जों में यही जानना चाहता हूँ, बातों को हम नहीं घुमाते, हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार को किन किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसको आगे लेकर जाना चाहिए, वो क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए।
1: गगन, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और खास तौर से हमारे जो मास्कॉम के विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक खाली पत्रकार होना ही नहीं होता, पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र है, और उस बृहद क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। एक तो व्यक्तित्व उसका ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई दाग ना हो और ना ही कोई दाग लगे। निर्भीकता इतनी होनी चाहिए कि कोई दाग लगाने की कोशिश भी करे तो वो 100 बार सोचे, किसी भी कारण से अपने आप को कमजोर ना महसूस हो, और अपनी लेखनी की ताकत, शब्दों की मर्यादा, भाषा का नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इन सब विशेषताओं को बना के रखें और हमेशा पत्रकारिता के क्षेत्र को बढ़ा के रखें, कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है
0: जी,
1: जहां एक छोटी सी बात से लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है।
0: सही का जी,
1: गोली से एक मर सकता है, दो मर सकते हैं, चार मर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से 100, 50, 200 लोग मर सकते हैं, लेकिन कलम बहुत लोगों को जिंदा कर सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है। कलम का सही इस्तेमाल करें, लेखनी का, अपनी लेखनी के ऊपर विश्वास रखें, अपनी भाषा का नियंत्रण रखें, अपने आप में नियंत्रित रहें, और इन्हीं सभी अच्छी विशेषताओं के साथ पत्रकारिता करें। मेरा सभी को यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव है।
0: बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी, जो कि एक बात का निचोड़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन बातों को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम बोलेगा, आपकी एक अपनी पहचान होगी, और इस तरीके से आप जिंदगी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। तो सर, कुछ और अगर आपको लगता है कि गगन आपकी तरफ से ये बात छूट रही थी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके अपने मन की बात तो आप भी अपने मन की बात रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो अपने मन की बात कम समय में ध्यान रखते हुए आपसे जान ही ली है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना एक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अपने विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से एक तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, और सभी अपने मास्कॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं सभी श्रोताओं को जो मन में ये लेके बैठे हों
0: जी
1: कभी, कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा मोह भंग हो गया,
0: जी
1: ऐसा क्षेत्र नहीं है, पत्रकारिता एक बहुत अच्छा बृहद क्षेत्र है, और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और स्तंभ हमेशा मजबूत होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब,
1: और वो हमेशा मजबूती के साथ अपने लोकतंत्र को या छत को या जिसको भी वो अपने कंधे पे रख के खड़ा रहता है। तो कृपया मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान दें, सम्मान दें, क्योंकि वो आपका ऐसा माध्यम है कि आपकी बात सुनता है और जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाता है।
2: बहुत गुण, बहुत गुण।
1: पत्रकारिता क्षेत्र के सभी साथियों को, बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी साथियों को यही कहूँगा कि इस पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है मजबूती के साथ हमेशा बनाए रखें और इसका मान सम्मान मर्यादा सभी का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे एक छोटा सा वादा जरूर लूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमारे स्टूडियो आएगा ताकि और अच्छी बातें हो सकें आपके साथ।
1: मुझे जब भी शारदा FM मुझे बुलाएंगे और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा और आपके पास जो भी आप मेरे से कहेंगे मैं करूंगा।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई होप लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यहां हमने पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, ये किस तरीके का क्षेत्र है, अगर आप यहां आते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेकर जा सकते हैं, अपने भविष्य को किस तरीके से संवार सकते हैं, ये सारी बातें हुई लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CEO श्री कुलदीप शर्मा जी से। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर, और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलेगा। और इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कहीं पर भी सुन पाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मुझे छेड़ना अच्छा लगता
2: है। और क्या अच्छा लगता
1: है? ये जो बातों ही बातों में मेरी आंखों के डीएम में स्लाइडिंग करती है ना, अच्छा लगता है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अकड़ी पकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
3: दिकीरो दिकीरो
4: Let's go, boys!
5: Feel the punch.

0: ऑडियो ओवर गो।
1: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
2: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
2: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
2: पूरी बाह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहने
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
2: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
2: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
1: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं
2: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
1: याद रखना, बुखार में देरी
2: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके हैं और 1 जून आज है। हाँ, 1 जून में 2 जून की तैयारी, मतलब 2 जून की 2 वक्त की रोटी की तैयारी। इसके बारे में जानेंगे जरूर। LPG पे दाम बढ़े हैं, घटे हैं, क्योंकि महीने की पहली तारीख से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है। सो डोंट गो एनीवेयर, हाँ मतलब कहीं जाएगा मत। सो दर एक ग्रेटर रोडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि ब्रेक के इस पार आएंगे तो हम बात करेंगे LPG गैस सिलेंडर के बारे में। सच बात तो एक महीने की पहली तारीख पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से सब लोगों की निगाहें रहती हैं फर्स्ट तारीख पर, यानी कि महीने की जो भी पहली तारीख होगी उस पर सब लोग निगाह जमा कर बैठे होते हैं कि क्या बढ़ने वाला, क्या घटने वाला है। फिलहाल LPG गैस सिलेंडर के बारे में मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। इसके बारे में मालूमात निकल कर ये सामने आ रही है कि फिलहाल ये जो स्थिति वैश्विक लेवल पर हो रही है, जो अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के चलते इसका जो फर्क है वो हम सब पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अगर विश्व का कल्याण होगा तो निश्चित तौर पर उसका जो फर्क है, उसका जो फायदा है वो हम सबको देखते ही बनेगा। अब इसका जो खामियाजा है वो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में थोड़ा इजाफा किया गया है। दिल्ली में प्रति सिलेंडर यानी कि 42 रुपए महंगा हो गया है और जिस तरीके से जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमतों में इजाफा किया गया तो उसका फर्क आम जन पर भी पड़ेगा। लेकिन घरेलू सिलेंडर की जब मैं बात करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि 14 किलोग्राम वाला जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत यथावत रखी गई है, यानी कि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हाँ, तो फिलहाल कुछ रोज के लिए बैन कर देंगे किसको, क्या बोलते हैं वो, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, अच्छी बात है, मत खाना वरना तबीयत खराब हो सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इंतहा हो गई। सच बात तो ये कि इंतहा हो गई, लेकिन कुछ रोज से मौसम जो बदला है जिसकी वजह से खुशनुमा माहौल हो चुका है उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
4: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
5: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
4: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
6: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन गिजार। स्टूडियो की घड़ी में 9:24 हो चुके हैं। एक तारीख है, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। बात करते हैं मौसम का, जो मिजाज बदला है जिसकी वजह से मौसम इस वक्त बड़ा अच्छा है, खुशनुमा है। लेकिन दिल्ली में AQI की अगर हम बात करें तो 2018 के बाद आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि तीसरा सबसे साफ महीना यानी कि मई का महीना माना गया है। और कम बारिश के बावजूद शुरुआती दिनों की जो बारिश हो रही है, वायु प्रवाह और प्रदूषण नियंत्रण उपायों से हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। और जून की शुरुआत में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहेगा और बताया जा रहा है कि आज और कल आंधी आ सकती है। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। कहने का मतलब ये कि जब आंधी आती है तो उस पेड़ के नीचे खड़े हैं जहां आप अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। हो सकता है कि पेड़ के नीचे खड़े रहने से आपको नुकसान हो सकता है, कोई टहनी टूट सकती है, किसी टीन शेड के नीचे अगर आप खड़े हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ध्यान से सोच कर समझ कर खड़े होने की आवश्यकता है। अगर आप बाइक पर ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो एक ऐसे स्थान पर चले जाइए ताकि कहीं कोई नुकसान न हो। हम भी यही चाहते हैं कि कोई जनधन हानि न हो, लेकिन ये सच है कि आंधी बारिश अंधेड़ में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: सेंसस यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं ननिहाल जाने का, इंतजार करते हैं ददिहाल जाने का। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ननिहाल जाओ ददिहाल जाओ। सच बात तो ये कि लोग यकीन मानिए कि हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब छुट्टियाँ होंगी, कब हम अपनी नानी के घर जाएंगे। और जैसे पापा दादी के घर कहते थे तो मम्मी लड़ पड़ती थी। ये तो घर घर की कहानी। खैर, बहादुर ने सच्चाई अपनी सबके सामने बयां कर दी। खैर, कहने का मतलब यह कि खुशी खुशी आप अपनी नानी के घर जाइए, दादी के घर भी जरूर जाएगा, मौसी के घर भी जरूर जाएगा, बुआ के घर भी जरूर जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपका पूरा महीना यूं ही गुजर जाएगा। छुट्टी पर एक अलग ही दमा चौकड़ी होती है, शरारत होती है, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, आखिरी दिन जब आता है तो गाना गाते हैं, यम्मा यम्मा बस आज की रात है, कल हम कहाँ तुम कहाँ। नहीं, गाना तो सुर में था, मैंने कोई झेल नहीं पाता इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। और गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 मई से लेकर 30 जून तक बंद रहते हैं अक्सर स्कूल, लेकिन इस साल 20 मई को बंद हुए तो लेकिन 15 जून को खुल जाएंगे स्कूल। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात आपको बता रहा हूँ। गर्मी को देखते हुए कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हरियाणा में समय से पहले स्कूल बंद कर दिए गए। हरियाणा में 25 मई से लेकर 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। तो इस तरीके से अपडेट्स कुछ निकल कर सामने आ रही हैं। और 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक दिल्ली में अवकाश रहेगा, यानी कि 51 दिनों का ब्रेक मिलने वाला है। हाँ, मम्मी सब परेशान होने वाली है कि कब स्कूल खुलेंगे, कब स्कूल खुलेंगे, कब हम इनको भेजेंगे। ओ हेलो कमरिया, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भारत अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
8: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नंदा शर्मा की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ 44 मिनट हो चुके हैं। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि एलपीजी गैस सिलेंडर यानी कि जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा किया गया, ये एक अपडेट है। दूसरी अपडेट निकलकर ये

होने से सरकारी स्कीम्स और जो तमाम सब्सिडी वाले जो प्रोजेक्ट्स में उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करा होगा जो इस लिस्ट में शामिल होंगे। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जान लेना समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ खास बातें, बेसिक बातें, इनको नज़रअंदाज ना करें। और पाँचवीं बात जो निकल कर सामने आ रही है कि 1 जून से कार भी महंगी होती हुई नजर आएगी। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जिंदगी म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नवी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी।

वादा स्टूडियो क्लॉक 9:53 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल। हमारे आसपास और भी बहुत कुछ खास है तो उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मौसम का मिजाज बदल ही रहा है तो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, ऐसे मौके मत चूकिएगा, चाहे वो प्याऊ की बात हो चाहे वो पौधा लगाने की बात हो। निश्चित तौर पर जब आपको एक वट वृक्ष मिलता है तो आप उसके नीचे सुस्ताना चाहते हैं, आप अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर छोटे छोटे कदमों से हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा एक खुशनुमा माहौल हम बना सकते हैं, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, है ना। लेकिन हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप कुछ देंगे सोसाइटी को समाज को तो मैं समझता हूं कि ये आपकी एक पहचान होगी, ये आपका एक काम होगा, और काम निश्चित तौर पर बोलता जरूर है। और अपने आप को जब खुशी मिलती है ना तो इंसान क्या से क्या कर लेता है, क्या से क्या करना चाहता है। और इसी खुशी की तलाश में स्टीव जॉब्स का जब हम जिक्र करते हैं, एप्पल के जो निर्माता हैं, कहते हैं कि वो आध्यात्मिक तलाश के लिए भारत आए थे, सुकून के लिए वो भारत आए थे, नीम करौली आश्रम तक वो पहुंचे। कहते हैं कि इंसान के जीवन में बदलाव आने से पहले उसे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, कड़ी मेहनत और संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बना देते हैं, फिर जाकर कहीं उसे सफलता मिलती है। कुछ ऐसी कहानी रही स्टीव जॉब्स की, है ना। और लास्ट में जब मैं एक चीज पढ़ रहा था तो बात निकल कर ये सामने आई कि भारत में उन्हें सादगी, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ यहाँ से उनको सीखने को मिली, और वही सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कंपनी में डाली और उसके बाद आज हम उनको जानते हैं। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि कोशिश करते जाइए, मेहनत करते जाइए, निश्चित तौर पर आपको आपका फल जरूर मिलेगा। ब्यूटीफुल ट्रैक पनवारी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर सुरशादा 90.8 FM, खेसारी लाल यादव की आवाज में, मासूम शर्मा की आवाज में, सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर।

ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना, सिंगर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीपशिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर पन्ना की।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है उसको आप निरोग रखें, हम सब स्वस्थ रहें और ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राम राम दोस्त, लाभ सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। मैं हूं गगन आपके साथ लेकर आपका अपना वही कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है? क्या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी? हमारे साथ हैं इस चर्चा में टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। तो सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में फिर से जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर भी फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात करी। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बेटियाँ आपके बेटी की उम्र की हैं, और आप इस बात को सही तरीके से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर एक चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मधुर आवाज आपने सुनी, ये मधुर आवाज है, हमारे साथ है हमारी टीकन भाभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है? टीकन भाभी क्या कहती हैं आप?
2: मेरा सीधा जवाब है नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पे डाल देना गलत है। विज्ञान यही कहता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वो साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: देखिए, इसीलिए हम टीकन भाभी को अपने इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि टीकन भाभी बड़ी अनुभवी हैं और तथ्यों पर आधारित बातों को आपके सामने लेकर आ रही है। तो दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल मेरा सुनीता जी से है कि बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है?
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सबसे जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि बाचपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है, पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी वे माँ बनी हैं। एक गवाह तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्भ से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देता है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि ये सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घर तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुल के बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेजी पकड़ती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है और माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
2: इसीलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं है, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: दोस्तों, ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे।
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये जो बाद में देखे वाली चीज है ना, वो होनी नहीं चाहिए। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। यह टीका स्वस्थ बच्ची को इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम से कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: भाई, आगे का सवाल पूछने से पहले मैं आप दोनों की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित है। अनुभव के आधार पर हम बातें आप तक, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार आ जाए तो? टीकन देवी, क्या कहेंगे आप?
2: इंजेक्शन लगने के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन या हल्का बुखार, ये कई टीकों में होता रहता है, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: लेकिन भाभी, अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है सुनीता, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: बिल्कुल बहुत सही बात दोस्तों टीकन भाभी ने कही है, और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि तथ्यों पर आधारित बातें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक है कि HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य ये कहता है कि उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। दोस्तों दूसरा मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य कहते हैं कि आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वो मां है। एक और मिथक की बात करते हैं, अभी छोटी है बाद में देखेंगे। तथ्य कहते हैं कि समय पर सुरक्षा का ही महत्व है, 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। अगला मिथक सामने आता है कि मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं है। भाई वैज्ञानिक कहते हैं, तथ्य कहते हैं कि मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है। सुनीता जी आप क्या कहते हैं?
1: जब आप ऐसे एक एक करके बात बताते हैं ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में तो सब गड़बड़ हो जाता है।
2: इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़े में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा मगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: तो उससे कहना कि क्योंकि कुछ बीमारी का बचाव पहले से किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में होने वाली एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो ये पूछे कि क्या इससे मेरे पीरियड्स पे असर होगा, तो उसको बता देना कि नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता है। और अगर वो तुमसे ये पूछे कि क्या इससे आगे चलकर मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, तो उसको ये जरूर कहना कि ये सब झूठी अफवाहें हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही टीकन भाभी। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं समझा कर लिया जा रहा है।
1: पर हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का एक कदम है, उसे अधिकार है ये पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का ही हिस्सा है।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन भाभी, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की, पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पे डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। फिर वो बोली ठीक है अम्मा अब हम साथ चलेंगे।
2: देखा सुनीता, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर एकदम से आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौंय चढ़ा लेते हैं।
2: बस तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ, स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी ही कम चलेगी।
0: बिल्कुल, अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। दोस्तों आधिकारिक जन संदेशों में ये भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए। दोस्तों
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है, अब हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में तो कभी नहीं सोचा।
2: वही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं करती। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी शरीर की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है ना, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा ऐसा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
0: बाकी बहुत अच्छी बातें सुनीता जी आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही। दोस्तों यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूएन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं दोस्तों, पर सच टिकाऊ होता है।

0: और श्रोताओं, यहाँ एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है। जैसे कि सुनीता जी ने, टीकन जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक बात रखी कि लड़कियों की आवाज को हम दबा देते हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित

0: जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है कि ना पूछना ही सबसे बड़ी गलती है।
0: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हो तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
2: और टीकन भाभी, मैं तो यही कहूंगा कि उनको सुनना होगा सुनो शारदा 90.8 FM।
0: जी बिल्कुल।
2: तो दोस्तों, ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है दोस्तों, जब संवाद सम्मान पूर्ण हो।
1: एक और बात मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और एक अनुभव के आधार पर दोस्तों, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। जब टीकन भाभी, सुनीता जी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुषों को भी इस प्रकार की भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करें दोस्तों। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिरी में रखते हैं।
0: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ में चलना चाहिए, तभी असली लाभ है। तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचेगा।
2: अब एक छोटा सा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही ले। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। नंबर एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। नंबर तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। नंबर चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। नंबर पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। नंबर छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सातवां नंबर, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं। क्यों सुनीता जी?
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
0: बस सुनीता, ऐसा ही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझा पाना भी है। अब हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
2: तो लाभ कई। तो श्रोताओं, ये विशेष कार्यक्रम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। टीकन भाभी का, सुनीता जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे। 0120406205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। सब खुश रहें, निरोग रहें। ऐसे विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। अरे

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं। हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जांच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: विक

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 7790। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आप दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और यही उम्मीद मन में रहती है कि आपको अच्छा फसल उत्पादन मिले। और जैसा कि किसान बहन भाइयों आप जानते हैं कि आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, जिस तरह से हर क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरह से आजकल खेती में भी हमारे बहुत से किसान भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार ले रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अधिकतर हमारे देश की जनसंख्या अपने रोजगार के लिए खेती पर ही निर्भर है, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। तो ऐसे में हमें खेती से किस तरह अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है, कहाँ से उन्नतशील बीजों की किस्मों को हम खरीदें, कैसे चयन करें, अपनी खेत की मिट्टी की जांच कहाँ कराएं, कैसे कराएं और क्यों कराना ज़रूरी है, साथ ही साथ पानी का खाद का प्रबंधन कैसे करें, कीट रोग पर नियंत्रण कैसे पाएं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई सामना करते हैं और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं खेती करने में। और आप मन में सोचते होंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए, उसी वक्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो किसान मित्रों, बड़ी खुशी के साथ आपको हम बता रहे हैं कि आपकी इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार पूरे देश भर में किसान कॉल सेंटर चला रही है। खेती से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना आप कर रहे हैं तो आप तुरंत किसान कॉल सेंटर में फोन लगा करके आप अपनी समस्या का समाधान अपनी ही भाषा में फ्री में उसी वक्त पा सकते हैं। कोई भी किसान भाई जो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान अपनी ही भाषा में फ्री में तुरंत पा सकता है। किसान कॉल सेंटर पर उपस्थित जानकार हमारे किसान भाई की समस्या का समाधान तुरंत उसी वक्त करते हैं। अगर कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति किसान भाई की समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है तो वो उसी समय उस कॉल को किसी विशेषज्ञ को ट्रांसफर कर देता है। तो किसान मित्रों, आप भी अपनी खेती से जुड़ी समस्या का समाधान किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके तुरंत पा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान कॉल सेंटर की उपयोगिता के बारे में और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना, किस्सा रहेगा सती सुलोचना का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और टीना से ये रागनी, किस्सा था सती सुलोचना का। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे किसान कॉल सेंटर की, जिस पे कि आप फोन करके अपनी कृषि संबंधी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हैं। तो किसान मित्रों, एक बार फिर से आपको किसान कॉल सेंटर का नंबर बता देते हैं ताकि आप अपनी समस्या का समाधान पा सकें। तो नोट कर लीजिए, किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-180-1551। किसान मित्रों, आपकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार खेती में अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर देश भर के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य किसानों को खेती में नई तकनीकों की जानकारी देना है। इन केंद्रों पर वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये केंद्र हमारे किसान भाइयों को स्वावलंबी बनाने में भी सहायता करते हैं। किसान मित्रों, कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कृषि आधारित ऐसे विस्तार केंद्र हैं जिनका काम किसानों को खेती की नई नई जानकारियों से परिचित कराना है। आपको बता दें, आम तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े होते हैं। खेती करने वाले किसानों और कृषि से संबंधित रोजगार में शामिल लोगों के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान का भंडार है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमारे किसान भाइयों के लिए क्या सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इन सुविधाओं के बारे में बात करने से पहले आपको यहां पर सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं जगत विधूड़ी। तो आइए सुनते हैं जगत विधूड़ी से ये उपदेश।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जगत विधुड़ी से ये उपदेश, और इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पर हमारे किसान मित्रों की सहायता कैसे की जाती है और क्या क्या सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं। तो आपको बता दें कि आपके जिले में खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु की जानकारी, मिट्टी और पानी की जांच की सुविधा आपको मिलती है, किसानों की समस्याओं का समाधान उनके खेतों पर ही करने की सुविधा दी जाती है, स्वरोजगार के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी और मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गृह विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, और किसान मेला, गोष्ठी, सेमिनार, कृषि प्रदर्शनी, इन सब के द्वारा हमारे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान की नवीनतम तकनीक की जानकारी देने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान मित्रों को खेती करने की सही सलाह देते हैं, ग्रामीणों को व्यवसायिक ट्रेनिंग देते हैं, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक विकसित करते हैं, कृषि प्रदर्शनी और सामूहिक चर्चा का आयोजन करते हैं। तो किसान मित्रों, ये कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। यदि आप खेती या ग्रामीण व्यवसाय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि विज्ञान केंद्र की उपयोगिता के बारे में, और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं पूजा।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये देशभक्ति गीत, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
3: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
5: हरी ले का

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 7790। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: रंजना, ओ रंजना।
3: जी जी जी, आ गई मैं, आ गई। ये लीजिए पानी। आज आप जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है।
3: मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
2: रुको, इसकी जरूरत नहीं है, ये लो।
3: ये क्या है?
2: तुम्हारा इनाम।
3: मेरा इनाम? क्या है इसमें?
2: अब देखो तो सही, कैसा लगा इनाम, पसंद नहीं आया क्या?
3: अभी ये क्या है? ये तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या है ये?
2: दिख नहीं रहा अंधी, डिवोर्स पेपर्स हैं।
3: आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मजाक कर रहे हैं ना? है ना अभी, प्लीज बोलिए ना, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप ऐसा मत करिए।
2: ये तलाक के पेपर्स हैं।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज मजाक मत करिए।
2: निकल यहाँ से।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, अभी नहीं।
2: निकल जाए यहाँ से, ये पेपर उठाओ, निकल यहाँ से, निकल।
3: नहीं अभी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हुआ क्या है पर मुझे ये तो बताओ पहले, अभी समझो ना मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसा मत करो अभी, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी, कैसे कहाँ रहूँगी, प्लीज अभी मेरे बारे में सोचो, मत करो ना, प्लीज ऐसा मत करो।
2: तुम जैसी बांझ औरत को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो अभी, प्लीज ऐसा मत करो।

0: थैंक यू सो मच ऑफिस से घर छोड़ने के लिए, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे, सच में।
1: अरे नहीं, थैंक यू सो मच तुमने मुझे अलाउ किया बल्कि अपने आप को यहाँ तक छोड़ने के लिए।
0: ओके बाय।
1: ओके बाय बाय, टेक केयर। रुको रंजना, रंजना, अरे रुको रंजना, रुको रंजना, कुछ बात करनी थी तुमसे। रंजना वैसे तो मुझे लंबी बात करने की आदत नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं, बस रंजना विल यू मैरी मी?
0: आशीष तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम जानते हो ना मैं शादी नहीं कर सकती। अगर हमने शादी कर ली तो हम फैमिली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत आए।
1: देखो रंजना, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम हाँ या ना में जवाब दो प्लीज रंजना, प्लीज।
0: ऑफ कोर्स यस आशीष, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें मना कर भी नहीं पाऊंगी।

0: अरे रंजना, तुम ठीक हो? क्या हुआ, इतनी थकी थकी लग रही हो?
1: कुछ नहीं, सब ठीक है।
0: अरे कुछ नहीं कैसे नहीं, तुम्हें देख के ही पता लग रहा है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम देखो इतना लड़खड़ाती हुई चल रही हो। अरे पहले बैठो तो सही, बैठो यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है?
1: पता नहीं, बस एक हफ्ते से कुछ थकान सी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ मतलब अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ मैं। चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ कमजोरी सी भी लग रही है। शायद गर्मी का महीना है ना, इसलिए हो रहा होगा।
0: अरे एक हफ्ता हो गया और तुमने मुझे एक हफ्ते से बताया भी नहीं। रंजना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम पागल हो। चलो डॉक्टर के पास, तुम पागल हो, जल्दी चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ।
1: डॉक्टर के पास? नहीं नहीं आशीष, डॉक्टर के पास क्यों जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो डॉक्टर के पास।
1: नहीं आशीष, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी थोड़ी सी दवाई खाऊंगी और फिर ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि चलो डॉक्टर के पास। अरे जल्दी चलो, जल्दी उठो, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। रंजना रंजना, अरे रंजू।
1: अरे आ गए तुम?
0: हाँ रंजू आ गया, ये लो पकड़ो।
1: आशीष ये क्या है? आशीष
0: तुम खुद ही खोल कर देख लो ना।
1: ये तो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है।
0: हाँ रंजना हाँ।
1: यानी कि आशीष मैं माँ बनने वाली हूँ?
0: हाँ रंजना बिल्कुल, तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो।
1: पर ये कैसे हो सकता है? नहीं ये रिपोर्ट गलत है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ, मैं तो बांझ हूँ।
0: रंजना पुरानी बातें रिपीट मत करो बस।
1: लेकिन ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये गलत है, मैंने पिछले 3 सालों से कभी कंसीव किया ही नहीं, अब कैसे?
0: रंजना तुम कभी भी बांझ नहीं थी, ऐसे कमजोर लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए ऐसा करते हैं, तुम कभी भी बांझ नहीं थी।
1: लेकिन
0: अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो होना था वो हो गया, अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या फिर बेटी?
1: बेटा। और तुम्हें?
0: बेटी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कभी तो हंसाए।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो

0: करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम

0: माँ, मैंने कहा है ना, मुझे शादी नहीं करनी है माँ अभी। माँ, मैंने पहले ही आपको कहा है कि मुझे पहले अपने पैरों पर स्टैंड होने दीजिए, फिर शादी कर लूंगी ना।
1: तो क्या अभी तू सर केवल खड़ी है क्या? पांवों पे तो खड़ी है।
0: माँ माँ माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो?
1: क्या माँ माँ माँ, 26 साल की हो गई है तू? अरे तेरे साथ की सभी की शादी हो गई है, मेरे मरने के बाद शादी करेगी क्या?
0: माँ प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और ये इमोशनल अत्याचार मुझ पे मत किया करो माँ, मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ।
1: हाँ हाँ, अब मैं तेरी माँ जो तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ कि तुझे अत्याचार लग रहा है। जब भी शादी की बात करूँ हमेशा तू यही कहती है।
0: माँ।

0: हाय दीपक।
1: हाय पायल, कैसी हो?
0: नहीं हूँ ठीक यार, परेशान हो गई हूँ।
1: क्यों, क्या परेशानी चल रही है?
0: यार माँ फिर से शादी के पीछे पड़ी हुई है, और तुझे तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं अपने पैर पे स्टैंड हो जाऊँ तो फिर मैं शादी के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है।
1: अरे यार, सही तो कह रही है तेरी माँ, कब शादी होगी, फिर कब बच्चे होंगे। हम दोनों साथ में कॉलेज गए थे और हमारे सभी दोस्त की शादी होगी है, पता है तुम्हें? अरे बताऊँ किस किस की शादी होगी है, नेहा, प्रीति, रीता, पल्लवी, देख ले मेरी भी तो शादी होगी है ना, और एक न एक दिन तो शादी करनी ही होगी यार। पायल
0: यार, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं करनी है, मुझे अभी अपना करियर बनाना है। चल ठीक है, मूड उदास कर दिया तूने मेरा, बाद में बात करूंगी तुझसे।
2: बस राधा, बहुत हो गया, बेटी हाथों से निकल रही है, इसके बाद कोई लड़का नहीं मिलेगा, तेरे साथ ही रहने वाली है क्या?
0: माँ, माँ मैं आ गई हूँ।
3: आ गई तू? तेरे अंकल का फोन आया था, क्यों सबसे मुझे बातें सुनाने को लगी है? 26 साल की हो गई और कब शादी होगी तेरी, और कब बच्चे होंगे? शादी और बच्चे में गैप होना जरूरी है, ये बात क्यों नहीं समझती तू? नहीं तो बाद में मुसीबत हो जाती है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा अच्छा और बुरा समझती हूँ, और अगर कोई है तेरी लाइफ में तो मुझे बता दे।
0: ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती।
3: बस तेरा फिर शुरू हो गया? ये लड़का देख, दीदी ने भेजा है, और कितना अच्छा लड़का है, और फैमिली भी अच्छी है, और अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए तुझे?
0: माँ आपको पता है ना इसको कैसी लड़की चाहिए, जो घर बैठकर इसके लिए रोटी बनाती रहे।
3: तो क्या हो गया, घर संभालना तो लड़की का काम होता है।
0: और मेरे काम का क्या, मेरे करियर का क्या? माँ आप क्यों नहीं समझती है, आपसे तो बात करना बेकार है। पता नहीं मैं क्यों बार बार आपके साथ बात करके टाइम वेस्ट करती हूँ, नहीं करनी है मुझे बात।
3: करियर, ये पता नहीं आज की लड़कियों को करियर करियर करने की क्या आदत हो गई है, पता नहीं कौन सी कंपनी की सीईओ बन जाएंगी जाके, बस करियर ही बनाना है, शादी वादी नहीं करनी है लड़कियों को।
0: क्या है माँ, शादी के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने नहीं आती आपको क्या?
3: ताना देने के अलावा कुछ नहीं आता तेरे को क्या?
0: माँ आप छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती है, कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का।

0: माँ माँ माँ क्या हुआ है, क्यों नहीं बात कर रही हो मुझसे? मेरी प्यारी माँ।
1: छोड़ मुझे, पीछे हो जा।
0: माँ क्यों नाराज हो, मुझे थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं दे देते? शादी करने से सब ठीक नहीं होता, और आपको पता है शादी करके क्या, अगर वो भी पापा की तरह निकला तो मेरी जिंदगी आपकी तरह तबाह। आई एम सॉरी माँ, आपको बुरा लगा ना।

0: लेकिन तू जानती है ना कि शादी भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है।
1: माँ, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट। मैं जानती हूँ आपने कितने एफर्ट्स के साथ मुझे बड़ा किया है और इस मुकाम तक पहुँचाया है। और माँ, आप एक खुद औरत हैं, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं? नानी ने आपको पराया धन कहा और इसके बाद आज आप मुझे पराया धन कह रही हैं। कल को मैं किसी और के घर जाऊंगी तो वो भी तो मुझे पराया धन कहेंगे। तो फिर इनमें से मेरा घर कौन सा है माँ? एक औरत का घर कौन सा है, आप ही बताइए। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ माँ, अभी प्लीज आप इस बात को समझिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज।
0: हाँ रूपा। हाँ हाँ, की है बात, पर देख यार, मेरी बेटी कोई गाय बकरी तो नहीं है कि हर किसी के साथ बांध दूँ उसको। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी आशा बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे पता है आपको चिंता है, पर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। आप अपना घर संभालिए और मैं अपना संभालती हूँ।
1: थैंक यू सो मच माँ, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, आई लव यू।
0: मेरी लाडली बेटी, मैं अपनी बच्ची की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। तुझे जो अच्छा लगता है तू वैसा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनिशाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ दुलार, खूब सारा प्यार। हमने इस कहानी में, जिस कहानी का शीर्षक था अधिक बलवान कौन, कहानी में हमने यह जाना कि हवा और सूरज के बीच शर्त लग गई, बहस छिड़ गई कि उनमें से अधिक बलवान कौन है। हवा ने कहा कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे अधिक बलवान ताकतवर होगा। तो समझ में आने लगा कि हवा तो आदमी का कोट उतरवा नहीं सकी। जब हवा बहुत तेज चली तो आदमी ने दोनों हाथों से अपना कोट पकड़ लिया और कोट के बटन बंद कर लिए। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि आदमी कोट उतार दे। लेकिन सूरज में बहुत गर्मी होती है और सूरज बहुत तेज तपने लगा और गर्मी की वजह से आदमी ने अपना कोट उतार दिया और कौन जीता? सूरज। तो सूरज जीत गया और उसने ये साबित कर दिया कि वह हवा से ज्यादा ताकतवर है। तो बच्चों, अब ये बताओ को इनमें से कौन अधिक बलवान लगता है? लेकिन साथ में यह भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अधिक बलवान है। हमारा पहला सवाल है सूरज या हवा। आपको सूरज और हवा में से सबसे अधिक बलवान कौन लगता है, सूरज या हवा? क्यों लगता है? कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें सूरज ज्यादा बलवान लगता है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि सूरज में गर्मी होती है और सूरज बहुत सारे काम करवा लेता है। वह पेड़ पौधों को सुखा भी सकता है, लोगों के कोट उतरवा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि बादल सूरज को ढक लेगा तो सूरज की तपिश, उसकी तपन, उसकी गर्मी बिल्कुल काम नहीं आएगी और तब पर हो जाएगी। और जब हवा बहुत जोर से चलती है तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। पेड़ इधर से उधर झूलने लगते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। जिनके घर छप्पर के होते हैं, कच्चे होते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, तो हवा के बहुत तेज चलने पर ये सब होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके विचार से हाथी ज्यादा बलवान है या शेर? बच्चे कहेंगे कि हाथी ज्यादा बलवान है। लेकिन क्यों? वे कहेंगे कि हाथी इसलिए बलवान है क्योंकि वह बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक। उसका वजन बहुत ज्यादा है, ये बात भी ठीक है। और वह शेर को अपनी सूंड में लपेट कर पटक लगा सकता है, यानी पटक नहीं दे सकता है। और ये तो आपने बहुत बार सिनेमा में देखा होगा, बहुत बार टीवी में देखा होगा कि हाथी अपनी सूंड में शेर को लपेट सकता है और उसे उठाकर पटक सकता है। तो जब हाथी शेर को पटकेगा तो शेर का तो कचुम्बर निकल जाएगा, उसकी हड्डी पसली सब एक हो जाएगी। तो इसलिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हाथी और शेर में से हाथी ज्यादा बलवान है, ज्यादा ताकतवर है। इन कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं हाथी और शेर में से शेर ज्यादा बलवान है, शेर ज्यादा ताकतवर है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो पता है बच्चों, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए उषा दीदी, हाथी भले ही बहुत मोटा है, वजनदार है, लेकिन सबसे ज्यादा फुर्तीला कौन है? वो तो शेर है। कभी हाथी और शेर में दौड़ लगी, यानी कि दोनों में कभी रेस लगी, तो कौन जीतेगा, हाथी जीतेगा या शेर? बच्चों के इस सवाल से तो मुझे भी चक्कर आने लगा कि ये बात तो सही है कि हाथी उतनी तेज गति से नहीं दौड़ सकता जितनी तेज गति से शेर दौड़ सकता है। यानी कि जब शेर अपना शिकार करता है तो बहुत फुर्ती से वह दौड़ता है और झपट लेता है अपने शिकार को और सीधा गर्दन पे वार करता है, कभी पैरों पर वार करता है। कुछ बच्चे जब ये कहते हैं कि हाथी और शेर में से शेर बलवान है तो उनकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए ये तर्क भी दिया है। या बच्चों, अब हम शेर की हाथी की बात से कुछ और हटकर बात करते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गर्मी या सर्दी में से अधिक बलवान कौन है, बच्चे कहेंगे कि गर्मी अधिक बलवान है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर्दी अधिक बलवान है, और मैं कहूंगी कि आप ये बताइए कि आप जब गर्मी को बलवान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और जब आप सर्दी को बलवान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ना क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जो बच्चे गर्मी को अधिक बलवान मानते हैं वे ये कहते हैं कि जब गर्मी बहुत आती है तो लोग अक्सर पसीने पसीने हो जाते हैं, दिन भर वे पानी में रहते हैं, स्नान करते हैं, शरबत पीते हैं, तो गर्मी में तो वो ताकत है उनके कोट उतरवा देती है। जो बच्चे सर्दी को ज्यादा ताकतवर कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर्दी जब आती है तो हमें गर्मी लगती ही नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, ये बात तो अच्छी सी लगी कुछ कि जब सर्दी आती तो गर्मी भाग जाती है, तो ये बात तो हम गर्मी के लिए भी कह सकते हैं कि जब गर्मी आती है तो सर्दी भाग जाती है। फिर बरसात बीच में कहेगी, आप दोनों बलवान नहीं है, बलवान मैं हूँ, क्योंकि मेरे आने से गर्मी रहती है और ना सर्दी रहती है। जुगत तो बहुत मजेदार है। गर्मी और सर्दी में ये बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन अधिक बलवान है, तो बीच में आके टपकी और उसने कहा कि आप दोनों में से ज्यादा बलवान मैं हूँ, क्योंकि मेरे होने पर लोगों को ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है। कि आज ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। आस तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चींटी है, सांप है, छिपकली है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, तो बताइए कि चूहे और बिल्ली में से कौन ज्यादा ताकतवर है? ओ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि उषा दीदी, बिल्ली ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्यों? अरे भाई, इसलिए क्योंकि बिल्ली बड़ी है और चूहा छोटा है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लीजिए कि भूकंप आ जाए या फिर कुत्ता आ जाए, तो सबसे पहले कौन दौड़ लगाएगा, बिल्ली या चूहा? तो सब कहेंगे कि दोनों दौड़ लगाएंगे। लेकिन अपने आप को बचा सकता है कि वहां तक कुत्ता ना पहुंच सके, तो फिर बच्चे कहेंगे कि बिल्ली तो मेज के नीचे छिप जाएगी, तो फिर मैं कहूंगी कि कुत्ता भी मेज के नीचे पहुंच जाएगा। फिर आप कि बिल्ली पलंग के नीचे छिप जाएगी, तो मैं कहूंगी कि कुत्ता पलंग के बाहर पहरा देने लगेगा, और बिल्ली कब तक वापस नहीं आएगी या बाहर नहीं आएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो चूहा है, ये चूहा झटपट अपने बिल में चला जाएगा, यानी कि जमीन में, दीवार के कोनों में जरा सा छेद होता है और चूहा अपना बिल बना लेता है, और चूहा अपने बिल में आराम से रहेगा, तो उसका घर है, अपने घर में जाकर आराम से रहेगा। अब चाहे कुत्ता उसके बिल के बाहर चौकीदारी करे या पहरेदारी करे, उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि छोटे से छेद में कुत्ता तो क्या, उसकी पूंछ भी नहीं आ सकती। इन चूहा जरूर अपने बिल में छुप सकता है। इसलिए चूहे और बिल्ली में से या चूहे और कुत्ते में से कौन अधिक बलवान हुआ, तो फिर चूहा अधिक बलवान हुआ। तो अब हम बात करते हैं ताकत की। सबको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि हमें ताकत मिल सके। तो बात जब ताकत की आई है, तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाते हैं? कोई आपसे कहे कि नंदू, आप बहुत ताकतवर हैं, ये साबित करके बताइए, तो नंदू भला क्या करेंगे? नंदू कहेंगे कि देखिए, मैं अपना बस्ता उठा सकता हूँ, तो बस्ता तो हल्का है। तो नंदू ने कहा कि नहीं, बस्ता हल्का नहीं है, तो अगर हम बस्ता छोड़ दें तो देखिए, मैं कुर्सी उठा सकता हूँ, तो फिर हम कहेंगे कि ये तो प्लास्टिक की कुर्सी है। दू ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लकड़ी की कुर्सी उठा सकता हूँ, मैं ये किताब उठा सकता हूँ। तो नंदू दरअसल तरह तरह की चीजों को उठाकर अपनी ताकत साबित करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी बहस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताकत की। ताकत की बात आई है तो बहुत सारे बच्चे अपने घरों में ये कहते होंगे, देखो मैंने आज 2 रोटी खाई और मैं कितना ताकतवर बन गया। तो बच्चों को ताकतवर बनने के लिए पौष्टिक भोजन करना बहुत जरूरी है। जंक फूड से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें ताकत नहीं मिलती बल्कि वह हमें आलस से पैदा करता है। तो हुआ यूं, एक दिन नंदू के घर में नंदू की बहस छिड़ गई नंदू की बहन से। तो नंदू की बहन ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नंदू ने कहा, नहीं नंदिनी, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इन दोनों की बहस, यानी कि नंदू और नंदिनी की बहस को सुन रहे थे उनके दादाजी। दादाजी ने कहा, बच्चों इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़कर दादाजी के पास पहुंच गए। उन्हें लगा कि दादाजी उन्हें चॉकलेट देने वाले हैं या फिर टॉफी देने वाले हैं।

0: लेकिन दादाजी ने बच्चों को ना तो चॉकलेट दी और ना ही टॉफी दी। दादाजी ने बच्चों से क्या कहा कि देखो बच्चों, शरीर की ताकत अलग बात है लेकिन दिमाग की ताकत अलग बात है। अब ये बताइए कि अगर आप सड़क पार कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि सड़क के उस तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिहीन है, दिव्यांग है, तो और आपको लगता है कि उन्हें भी सड़क पार करनी है, लेकिन वे ये नहीं जान पाएंगे कि उनके आसपास की कारें, वाहन कितनी तेजी से सड़क पर दौड़ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो नंदिनी और नंदू दोनों सोचने लगे कि वे क्या करेंगे। तो नंदिनी ने कहा कि हम उनके पास जाएंगे और उनका हाथ पकड़कर हम उन्हें सड़क के इस तरफ ले आएंगे। तो नंदू ने कहा कि हम मैं भी सड़क के उस तरफ जाऊंगा, उन व्यक्ति के पास पहुंचूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, पता वे किसी का इंतजार कर रहे हो या क्या पता उन्हें सड़क पार करनी हो। सबसे पहले मैं उनसे यह पूछूंगा कि अंकल आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या आपको सड़क पार करनी है, तब मैं ये निर्णय लूंगा कि मुझे उन्हें सड़क पार करवानी है या नहीं करवानी, या जब वे किसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके आने तक मैं उनके साथ रहूं। दादाजी ने कहा देखा, ये होता है बुद्धि का बल। मान लीजिए कि उन्हें सड़क पार करनी ही नहीं थी और हमें यूं देखकर लगा कि उन्हें सड़क पार करनी है, तो हमने उनकी मदद करने की बजाय उनकी मुसीबत बढ़ा दी। तो पहले पूछ लें, पूछ कर ही काम करें। पानी में आपने देखा था कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह बहुत जोर से चली, और सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह तपता चला गया, और दोनों ने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी ताकत दिखाई। अच्छा बच्चों, अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, तो सारे बच्चे कहेंगे जो सूरज ने किया, जो हवा ने किया, यानी पानी भी जोर जोर से बरसने लगेगा, तो ये उसकी ताकत है। तो फिर बादल क्या करेगा? बादल जोर जोर से गर्जना करेंगे, गर्जेंगे और फिर बरस जाएंगे। तो फिर पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा? पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा, ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल पूछ लिया। पहाड़ अपनी ताकत हिल कर दिखा सकता है कि जब लैंडस्लाइडिंग होती है, यानी कि पहाड़ खिसकता है, तो बहुत नुकसान होता है, तो पहाड़ अपनी ताकत यूं दिखा सकता है। और सर्दी अपनी ताकत कैसे दिखाएगी? ये सवाल तो बहुत आसान है। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब ठंड पैदा करेगी, खूब ठंड पैदा करेगी, और लोग बहुत सारे कपड़े ओढ़ लेंगे। ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत दिखा सकती हैं। बच्चों मान लो कि अगर हवा ने कहा होता कहानी में कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो कहानी में आगे क्या होता, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। कहानी को बनाने की जिम्मेदारी आप बच्चों की है। आप बच्चे इस कहानी को अपनी कल्पना से लिखिए, बनाइए और हमारे पास भेजिए। तो कहानी में करना क्या है, एक बार दोहरा लेते हैं। मान लो कि हवा ने कहा कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो कहानी में क्या होता, को झटपट अपनी एक कहानी बनानी है, खूब मजेदार कहानी बनानी है और हमारे पास भेजना है। हमारे पास पहुंचने का पता क्या है? पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। बस आप इस ईमेल आईडी पर अपनी बनाई हुई कहानियां हमारे पास भेज दीजिएगा। अब ताकत की चली है तो भाषा में भी बहुत ताकत होती है। भाषा में शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, बात होती है, तर्क होते हैं, कल्पना होती है, अनुमान होता है, तो भाषा के पास भी अपनी बहुत ज्यादा ताकत है। तो शब्दों में जो ताकत है वह क्या ताकत है कि शब्द में जो अक्षर आते हैं, अगर हम उन्हें आगे पीछे कर दें तो कुछ ही अक्षरों से बहुत सारे नए शब्द भी बन जाते हैं। ये ताकत होती है भाषा की। जैसे हम एक शब्द सुनते हैं ताजमहल, दोबारा सुन लें, ताजमहल। अब इस ताजमहल में कौन कौन से अक्षर हैं? है, शाबाश, ज, म, ह और ल। तो ताजमहल में 5 अक्षर हैं, ता, ज, म, ह, ल। इन अक्षरों को एक खास क्रम में जब रखते हैं तो एक शब्द बनता है ताजमहल। शब्दों की ताकत आपको देखनी है और शब्दों की ताकत आपको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे जोड़ तोड़ कर कुछ और नए शब्द बनाएंगे। जैसे ताज, जैसे महल, जैसे जम, से हल, अल, मल। तो यानी हमने ताजमहल में जितने अक्षर आए हैं उन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर 6 और नए शब्द बना दिए। आप इससे ज्यादा और शब्द बना सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा। तो आपको अपनी भाषा की ताकत साबित करने के लिए क्या करना है, चुनौती हम आपके लिए लेकर आए हैं और मुझे मालूम है कि सारे बच्चे इस चुनौती में खरे उतरेंगे। तो आपके लिए एक शब्द है कमल ककड़ी। तो बच्चे अपनी कॉपी में झटपट से ये शब्द लिख लीजिए, कमल ककड़ी। तो जब हम कमल ककड़ी लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा, अ म ल क क ड़ी। तो इसमें कितने अक्षर हैं, कमल ककड़ी में हैं 6 अक्षर, क म ल क क ड़ी। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी भाषा की ताकत दिखानी है। हम क्या करेंगे, हम इन अक्षरों को जोड़ तोड़ कर एक अलग खास क्रम में रखते हुए बहुत सारे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। शब्द मैं कह देती हूँ और एक शब्द आप कह दीजिएगा, तो शुरू करें। तो आप ये कहेंगे कि उषा दीदी हर बार आप खुद से शुरू करती हैं। तो लीजिए साहब, आपकी शिकायत हम दूर करते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं। आपने हमें शब्द बताया कमल, शाबाश। मेरा शब्द है ककड़ी, आपका शब्द है कल और मेरा शब्द है मल, आपका शब्द है लकड़ी। तो लीजिए साहब, मेरा शब्द है मकड़ी, आपका शब्द है कम और मेरा शब्द है कड़ी। मजा आया? तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी अपनी किताब में, अपने आसपास अखबार में है, बस आपको उन शब्दों को छांटना है। अपनी पसंद के शब्द छांट लीजिए और उस शब्द में जो अक्षर आए हैं उन्हें जोड़ तोड़ कर, यानी कि एक खास क्रम में रखते हुए, आगे पीछे रखते हुए नए शब्द बनाइए। और शब्द ऐसे बनने चाहिए जिनका अपना कोई अर्थ हो। हम ये कह सकते हैं कि कल का क्या मतलब है, तो कल के 2 अर्थ हैं, एक कल जो बीत गया और एक कल जो आने वाला है। और कम का क्या मतलब है, कम का मतलब है जो चीज बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है, उसे हम कम कहते हैं। और आप पूछेंगे कि कड़ी का क्या मतलब है, कड़ी कहते हैं सांकल को। बहुत पुराने जमाने में घरों में ताले नहीं लगते थे, सांकल लगती थी। दरवाजा बंद किया और दरवाजे के पीछे एक लकड़ी का फट्टा लगा देते थे और एक सांकल, जिसे हम कहते हैं कुंडी। तो कुंडी है, कड़ी है, सांकल है, ये एक ही अर्थ को देते हैं। तो आपको बस यही करना है, आपको अपने पसंदीदा शब्द लेने हैं और उनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे एक शब्द हम कहते हैं तालाब, तो इससे कौन सा शब्द बन सकता है, यह शब्द बन सकता है ताला। तो तालाब में क्या है, ता, ला और ब। तो हमने एक नया शब्द इसमें से बनाया, ताला। और एक और शब्द बन सकता है बला। ठीक, तो बस ऐसे ही आप झटपट बहुत सारे शब्द खोजिए और शब्द बनाइए। शब्दों की ताकत की बात चली है तो फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, या यूं कहिए कि एक अर्थ के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। ते बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो यह बताइए कि अधिक शब्द के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहेंगे अधिक के लिए हम ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल होगा कि वह भला कैसे? इतनी आसानी से हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर नंदू ने एक वाक्य बनाया। नंदू ने कहा कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अधिक की जगह हम ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायदा की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फायदा शब्द की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाभ। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या लाभ होगा? अगर नंदू के पास 2 रुपए हैं और उसके चाचा जी ने 2 रुपए और दिए, तो नंदू के पास हो गए 4 रुपए। तो नंदू को कितने रुपए का फायदा हुआ? 4 रुपए का। तो नंदू को कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए का। तो फायदा के लिए हम जो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह शब्द है लाभ। पर शब्द है, और यह शब्द अक्सर हम अपने कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं। कुछ याद आया? दिमाग की ताकत तो आपके पास बहुत है, और यह शब्द है नमस्कार। नमस्कार की जगह हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? नमस्कार की जगह हम दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं प्रणाम, नमस्ते। शरीर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शरीर शब्द की जगह हम और जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह हो सकता है तन और बदन। झगड़ा के लिए क्या होगा? झगड़ा के लिए तो मुझे कोई शब्द सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं झगड़ा करती नहीं हूँ, तो मेरे पास झगड़ा के लिए कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। लेकिन ये नंदनी बहुत झगड़ा करती है, और वह भी बात बात पे नंदू से झगड़ लेती है। तो नंदिनी ने कहा कि झगड़ा की जगह हम लड़ाई शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़ा और लड़ाई तो न करें, लेकिन हाँ शब्दों का जरूर पता हो। और हमारे पास अब आपके लिए एक अंतिम शब्द है, और वह शब्द है सर्दी। तो सर्दी की जगह हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? सर्दी की जगह हम कह सकते हैं ठंड या फिर शीत। दोनों में से आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारा काम किया। ताकत की बात की, शब्दों की बात की, कहानी की बात की, और हमने यह भी देखा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, अक्षरों में कितनी ताकत होती है। अगर वे सही ढंग से मिल जाएं तो बहुत सारे नए और सार्थक शब्द बना सकते हैं। आपने शब्दों का काम किया, और हमने भी आपको शब्दों से ही जुड़ा हुआ एक काम करने के लिए कह दिया। लेकिन सारे बच्चे अपनी कहानी भेजना मत भूलिएगा। आपकी कहानी की प्रतीक्षा करेंगे, और इंतजार कहाँ करेंगे? इंतजार करेंगे इस पते पर। हमारा ईमेल आईडी है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पर अपनी कहानी जरूर भेजिएगा। कहानी क्या भेजनी है? कहानी तो ये भेजनी है कि मान लो अगर हवा ने कहा होता कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो बताइए कहानी में क्या होता। मैं आप सब की कहानी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, और निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में।
0: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और खूब सारा लाड़ दुलार, खूब सारा प्यार। तुमने इस कहानी में, जिस कहानी का शीर्षक था अधिक बलवान कौन, कहानी में हमने यह जाना कि हवा और सूरज के बीच शर्त लग गई, बहस छिड़ गई कि उनमें से अधिक बलवान कौन है। हवा ने कहा कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे अधिक बलवान ताकतवर होगा। तो समझ में आने लगा कि हवा तो आदमी का कोट उतरवा नहीं सकी। जब हवा बहुत तेज चली तो आदमी ने दोनों हाथों से अपना कोट पकड़ लिया और कोट के बटन बंद कर लिए। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि आदमी कोट उतार दे। लेकिन सूरज में बहुत गर्मी होती है और सूरज बहुत तेज तपने लगा और गर्मी की वजह से आदमी ने अपना कोट उतार दिया और कौन जीता? सूरज। तो सूरज जीत गया और उसने ये साबित कर दिया कि वह हवा से ज्यादा ताकतवर है। तो बच्चों अब ये बताओ को इनमें से कौन अधिक बलवान लगता है? लेकिन साथ में यह भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अधिक बलवान है। हमारा पहला सवाल है सूरज या हवा? आपको सूरज और हवा में से सबसे अधिक बलवान कौन लगता है, सूरज या हवा? क्यों लगता है? कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें सूरज ज्यादा बलवान लगता है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि सूरज में गर्मी होती है और सूरज बहुत सारे काम करवा लेता है। वह पेड़ पौधों को सुखा भी सकता है, लोगों के कोट उतरवा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि बादल सूरज को ढक लेगा तो सूरज की तपिश, उसकी तपन, उसकी गर्मी बिल्कुल काम नहीं आएगी और तब पर हो जाएगी। और जब हवा बहुत जोर से चलती है तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। पेड़ इधर से उधर झूलने लगते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। जिनके घर छप्पर के होते हैं, कच्चे होते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, तो हवा के बहुत तेज चलने पर ये सब होता है। अच्छा अब ये बताइए कि आपके विचार से हाथी ज्यादा बलवान है या शेर? बच्चे कहेंगे कि हाथी ज्यादा बलवान है, लेकिन क्यों? वे कहेंगे कि हाथी इसलिए बलवान है क्योंकि वह बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक। का वजन बहुत ज्यादा है, ये बात भी ठीक है। और वह शेर को अपनी सूंड में लपेट कर पटक लगा सकता है, यानी पटक नहीं दे सकता है। और ये तो आपने बहुत बार सिनेमा में देखा होगा, बहुत बार टीवी में देखा होगा कि हाथी अपनी सूंड में शेर को लपेट सकता है और उसे उठाकर पटक सकता है। तो जब हाथी शेर को पटकेगा तो शेर का तो कचुम्बर निकल जाएगा, उसकी हड्डी पसली सब एक हो जाएगी। तो इसलिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हाथी और शेर में से हाथी ज्यादा बलवान है, ज्यादा ताकतवर है। इन कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं हाथी और शेर में से शेर ज्यादा बलवान है, शेर ज्यादा ताकतवर है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो पता है बच्चों उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए उषा दीदी, हाथी भले ही बहुत मोटा है, वजनदार है, लेकिन सबसे ज्यादा फुर्तीला कौन है? वो तो शेर है। कभी हाथी और शेर में दौड़ लगी, यानी कि दोनों में कभी रेस लगी, तो कौन जीतेगा, हाथी जीतेगा या शेर? बच्चों के इस सवाल से तो मुझे भी चक्कर आने लगा कि ये बात तो सही है कि हाथी उतनी तेज गति से नहीं दौड़ सकता जितनी तेज गति से शेर दौड़ सकता है। यानी कि जब शेर अपना शिकार करता है तो बहुत फुर्ती से वह दौड़ता है और झपट लेता है अपने शिकार को और सीधा गर्दन पे वार करता है, कभी पैरों पर वार करता है। कुछ बच्चे जब ये कहते हैं कि हाथी और शेर में से शेर बलवान है तो उनकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए ये तर्क भी दिया है। तो बच्चों अब हम शेर की, हाथी की बात से कुछ और हटकर बात करते हैं।

अगर आपसे यह पूछा जाए कि गर्मी या सर्दी में से अधिक बलवान कौन है, बच्चे कहेंगे कि गर्मी अधिक बलवान है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर्दी अधिक बलवान है, और मैं कहूंगी कि आप ये बताइए कि आप जब गर्मी को बलवान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और जब आप सर्दी को बलवान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ना क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। जो बच्चे गर्मी को अधिक बलवान मानते हैं वे ये कहते हैं कि जब गर्मी बहुत आती है तो लोग अक्सर पसीने पसीने हो जाते हैं, दिन भर वे पानी में रहते हैं, स्नान करते हैं, शरबत पीते हैं, तो गर्मी में तो वो ताकत है उनके कोट उतरवा देती है। जो बच्चे सर्दी को ज्यादा ताकतवर कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर्दी जब आती है तो हमें गर्मी लगती ही नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, ये बात तो अच्छी सी लगी कुछ, कि जब सर्दी आती तो गर्मी भाग जाती है। तो ये बात तो हम गर्मी के लिए भी कह सकते हैं कि जब गर्मी आती है तो सर्दी भाग जाती है। फिर बरसात बीच में कहेगी, आप दोनों बलवान नहीं है, बलवान मैं हूँ, क्योंकि मेरे आने से गर्मी रहती है और ना सर्दी रहती है। जुगत तो बहुत मजेदार है। गर्मी और सर्दी में ये बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन अधिक बलवान है, तो बीच में आके टपकी और उसने कहा कि आप दोनों में से ज्यादा बलवान मैं हूँ, क्योंकि मेरे होने पर लोगों को ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है। कि आज ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। आस तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चींटी है, सांप है, छिपकली है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, तो बताइए कि चूहे और बिल्ली में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ओ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि उषा दीदी, बिल्ली ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्यों? अरे भाई, इसलिए क्योंकि बिल्ली बड़ी है और चूहा छोटा है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लीजिए कि भूकंप आ जाए या फिर कुत्ता आ जाए, तो सबसे पहले कौन दौड़ लगाएगा, बिल्ली या चूहा? तो सब कहेंगे कि दोनों दौड़ लगाएंगे, लेकिन अपने आप को बचा सकता है कि वहां तक कुत्ता ना पहुंच सके, तो फिर बच्चे कहेंगे कि बिल्ली तो मेज के नीचे छिप जाएगी, तो फिर मैं कहूंगी कि कुत्ता भी मेज के नीचे पहुंच जाएगा, फिर आप कि बिल्ली पलंग के नीचे छिप जाएगी, तो मैं कहूंगी कि कुत्ता पलंग के बाहर पहरा देने लगेगा, और बिल्ली कब तक वापस नहीं आएगी या बाहर नहीं आएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो चूहा है, ये चूहा झटपट अपने बिल में चला जाएगा, यानी कि जमीन में दीवार के कोनों में जरा सा छेद होता है और चूहा अपना बिल बना लेता है, और चूहा अपने बिल में आराम से रहेगा, तो उसका घर है, अपने घर में जाकर आराम से रहेगा। अब चाहे कुत्ता उसके बिल के बाहर चौकीदारी करे या पहरेदारी करे, उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि छोटे से छेद में कुत्ता तो क्या, उसकी पूंछ भी नहीं आ सकती। इन चूहा जरूर अपने बिल में छुप सकता है, इसलिए चूहे और बिल्ली में से या चूहे और कुत्ते में से कौन अधिक बलवान हुआ, तो फिर चूहा अधिक बलवान हुआ। तो अब हम बात करते हैं ताकत की। सबको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि हमें ताकत मिल सके। तो बात जब ताकत की आई है, तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाते हैं? कोई आपसे कहे कि नंदू, आप बहुत ताकतवर हैं, ये साबित करके बताइए, तो नंदू भला क्या करेंगे? नंदू कहेंगे कि देखिए, मैं अपना बस्ता उठा सकता हूँ, तो बस्ता तो हल्का है। तो नंदू ने कहा कि नहीं, बस्ता हल्का नहीं है, तो अगर हम बस्ता छोड़ दें तो देखिए, मैं कुर्सी उठा सकता हूँ। तो फिर हम कहेंगे कि ये तो प्लास्टिक की कुर्सी है। नंदू ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लकड़ी की कुर्सी उठा सकता हूँ, मैं ये किताब उठा सकता हूँ। तो नंदू दरअसल तरह तरह की चीजों को उठाकर अपनी ताकत साबित करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी बहस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताकत की। ताकत की बात आई है तो बहुत सारे बच्चे अपने घरों में ये कहते होंगे, देखो मैंने आज दो रोटी खाई और मैं कितना ताकतवर बन गया।
तो बच्चों को ताकतवर बनने के लिए पौष्टिक भोजन करना बहुत जरूरी है। जंक फूड से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें ताकत नहीं मिलती बल्कि वह हमें आलस से पैदा करता है। तो हुआ यूं, एक दिन नंदू के घर में नंदू की बहस छिड़ गई नंदू की बहन से। तो नंदू की बहन ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नंदू ने कहा, नहीं नंदिनी, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इन दोनों की बहस, यानी कि नंदू और नंदिनी की बहस को सुन रहे थे उनके दादाजी। दादाजी ने कहा, बच्चों इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़कर दादाजी के पास पहुंच गए। उन्हें लगा कि दादाजी उन्हें चॉकलेट देने वाले हैं या फिर टॉफी देने वाले हैं, लेकिन दादाजी ने बच्चों को ना तो चॉकलेट दी और ना ही टॉफी दी। दादाजी ने बच्चों से क्या कहा कि देखो बच्चों, शरीर की ताकत अलग बात है लेकिन दिमाग की ताकत अलग बात है। अब ये बताइए कि अगर आप सड़क पार कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि सड़क के उस तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिहीन है, दिव्यांग है, तो और आपको लगता है कि उन्हें भी सड़क पार करनी है, लेकिन वे ये नहीं जान पाएंगे कि उनके आसपास की कारें, वाहन कितनी तेजी से सड़क पर दौड़ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो नंदिनी और नंदू दोनों सोचने लगे कि वे क्या करेंगे। तो नंदिनी ने कहा कि हम उनके पास जाएंगे और उनका हाथ पकड़कर हम उन्हें सड़क के इस तरफ ले आएंगे। तो नंदू ने कहा कि मैं भी सड़क के उस तरफ जाऊंगा, उन व्यक्ति के पास पहुंचूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। पता वे किसी का इंतजार कर रहे हो, या क्या पता उन्हें सड़क पार करनी हो। सबसे पहले मैं उनसे यह पूछूंगा कि अंकल आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या आपको सड़क पार करनी है। तब मैं ये निर्णय लूंगा कि मुझे उन्हें सड़क पार करवानी है या नहीं करवानी, या जब वे किसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके आने तक मैं उनके साथ रहूं। दादाजी ने कहा, देखा ये होता है बुद्धि का बल। मान लीजिए कि उन्हें सड़क पार करनी ही नहीं थी और हमें यूं देखकर लगा कि उन्हें सड़क पार करनी है, तो हमने उनकी मदद करने की बजाय उनकी मुसीबत बढ़ा दी। तो पहले पूछ लें, पूछ कर ही काम करें। पानी में आपने देखा था कि हवा ने अपनी पूछ लें, पूछ कर ही काम करें। पानी में आपने देखा था कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह बहुत जोर से चली, और सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह तपता चला गया, और दोनों ने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी ताकत दिखाई। अच्छा बच्चों, अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, तो सारे बच्चे कहेंगे जो सूरज ने किया, जो हवा ने किया, यानी पानी भी जोर जोर से बरसने लगेगा, तो ये उसकी ताकत है। तो फिर बादल क्या करेगा? बादल जोर जोर से गर्जना करेंगे, गर्जेंगे और फिर बरस जाएंगे। तो फिर पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा? पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा, ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल पूछ लिया। पहाड़ अपनी ताकत हिल कर दिखा सकता है कि जब लैंडस्लाइडिंग होती है, यानी कि पहाड़ खिसकता है तो बहुत नुकसान होता है, तो पहाड़ अपनी ताकत यूं दिखा सकता है। और सर्दी अपनी ताकत कैसे दिखाएगी, ये सवाल तो बहुत आसान है। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब ठंड पैदा करेगी, खूब ठंड पैदा करेगी, और लोग बहुत सारे कपड़े फोड़ लेंगे। ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत दिखा सकती हैं। तो बच्चों मान लो कि अगर हवा ने कहा होता कहानी में कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो कहानी में आगे क्या होता, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। कहानी को बनाने की जिम्मेदारी आप बच्चों की है। आप बच्चे इस कहानी को अपनी कल्पना से लिखिए, बनाइए और हमारे पास भेजिए। तो कहानी में करना क्या है, एक बार दोहरा लेते हैं। मान लो कि हवा ने कहा
कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर हो।

होगा तो कहानी में क्या होता। को झटपट अपनी एक कहानी बनानी है, खूब मजेदार कहानी बनानी है और हमारे पास भेजना है। हमारे पास पहुंचने का पता क्या है? पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। बस आप इस ईमेल आईडी पर अपनी बनाई हुई कहानियां हमारे पास भेज दीजिएगा। अब ताकत की चली है तो भाषा में भी बहुत ताकत होती है। भाषा में शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, बात होती है, तर्क होते हैं, कल्पना होती है, अनुमान होता है, तो भाषा के पास भी अपनी बहुत ज्यादा ताकत है। तो शब्दों में जो ताकत है वह क्या ताकत है कि शब्द में जो अक्षर आते हैं अगर हम उन्हें आगे पीछे कर दें तो कुछ ही अक्षरों से बहुत सारे नए शब्द भी बन जाते हैं। ये ताकत होती है भाषा की। जैसे हम एक शब्द सुनते हैं ताजमहल, दोबारा सुन लें, ताजमहल। अब इस ताजमहल में कौन कौन से अक्षर हैं? है शाबाश, ज, म, ह और ल। तो ताजमहल में पांच अक्षर हैं, ता, ज, म, ह, ल। इन अक्षरों को एक खास क्रम में जब रखते हैं तो एक शब्द बनता है ताजमहल। शब्दों की ताकत आपको देखनी है और शब्दों की ताकत आपको बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे जोड़ तोड़ कर कुछ और नए शब्द बनाएंगे। जैसे ताज, जैसे महल, जैसे जम, से हल, अल, मल। तो यानी हमने ताज महल में जितने अक्षर आए हैं उन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर छह और नए शब्द बना दिए। आप इससे ज्यादा और शब्द बना सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा। तो आपको अपनी भाषा की ताकत साबित करने के लिए क्या करना है, चुनौती हम आपके लिए लेकर आए हैं और मुझे मालूम है कि सारे बच्चे इस चुनौती में खरे उतरेंगे। तो आपके लिए एक शब्द है कमल ककड़ी। तो बच्चे अपनी कॉपी में झटपट से ये शब्द लिख लीजिए, कमल ककड़ी। तो जब हम कमल ककड़ी लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा, अ म ल क क ड़ी। तो इसमें कितने अक्षर हैं? कमल ककड़ी में है छह अक्षर, क म ल क क ड़ी। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी भाषा की ताकत दिखानी है। हम क्या करेंगे, हम इन अक्षरों को जोड़ तोड़ कर एक अलग खास क्रम में रखते हुए बहुत सारे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। शब्द मैं कह देती हूँ और एक शब्द आप कह दीजिएगा, तो शुरू करें। तो आप ये कहेंगे कि उषा दीदी हर बार आप खुद से शुरू करती हैं। तो लीजिए साहब, आपकी शिकायत हम दूर करते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं। आपने हमें शब्द बताया कमल, शाबाश। मेरा शब्द है ककड़ी, आपका शब्द है कल और मेरा शब्द है मल, आपका शब्द है लकड़ी। तो लीजिए साहब, मेरा शब्द है मकड़ी, आपका शब्द है कम और मेरा शब्द है कड़ी। मजा आया? तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी अपनी किताब में, अपने आसपास अखबार में हैं। बस आपको उन शब्दों को छांटना है, अपनी पसंद के शब्द छांट लीजिए और उस शब्द में जो अक्षर आए हैं उन्हें जोड़ तोड़ कर यानी कि एक खास क्रम में रखते हुए, आगे पीछे रखते हुए नए शब्द बनाइए और शब्द ऐसे बनने चाहिए जिनका अपना कोई अर्थ हो। हम ये कह सकते हैं कि कल का क्या मतलब है, तो कल के दो अर्थ हैं, एक कल जो बीत गया और एक कल जो आने वाला है। और कम का क्या मतलब है, कम का मतलब है जो चीज बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है, उसे हम कम कहते हैं। और आप पूछेंगे कि कड़ी का क्या मतलब है, कड़ी कहते हैं सांकल को। बहुत पुराने जमाने में घरों में ताले नहीं लगते थे, सांकल लगती थी, दरवाजा बंद किया और दरवाजे के पीछे एक लकड़ी का फट्टा लगा देते थे और एक सांकल जिसे हम कहते हैं कुंडी,

0: बहुत सारे शब्द हैं। ते बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो यह बताइए कि अधिक शब्द के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहेंगे अधिक के लिए हम ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल होगा कि वह भला कैसे? इतनी आसानी से हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर नंदू ने एक वाक्य बनाया। नंदू ने कहा कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अधिक की जगह हम ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायदा की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फायदा शब्द की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाभ। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा? अगर नंदू के पास 2 रुपए हैं और उसके चाचा जी ने 2 रुपए और दिए, तो नंदू के पास हो गए 4 रुपए। तो नंदू को कितने रुपए का फायदा हुआ? 4 रुपए का। तो नंदू को कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए का। तो फायदा के लिए हम जो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह शब्द है लाभ। कौन शब्द है? और यह शब्द अक्सर हम अपने कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं। कुछ याद आया? दिमाग की ताकत तो आपके पास बहुत है। और यह शब्द है नमस्कार। नमस्कार की जगह हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? नमस्कार की जगह हम दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं प्रणाम, नमस्ते। शरीर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शरीर शब्द की जगह हम और जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह हो सकता है तन और बदन। झगड़ा के लिए क्या होगा? झगड़ा के लिए तो मुझे कोई शब्द सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं झगड़ा करती नहीं हूँ, तो मेरे पास झगड़ा के लिए कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। लेकिन ये नंदनी बहुत झगड़ा करती है और वह भी बात बात पे नंदू से झगड़ लेती है। तो नंदिनी ने कहा कि झगड़ा की जगह हम लड़ाई शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़ा और लड़ाई तो न करें, लेकिन हाँ शब्दों का जरूर पता हो। और हमारे पास अब आपके लिए एक अंतिम शब्द है, और वह शब्द है सर्दी। तो सर्दी की जगह हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? सर्दी की जगह हम कह सकते हैं ठंड या फिर शीत। दोनों में से आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारा काम किया। ताकत की बात की, शब्दों की बात की, कहानी की बात की, और हमने यह भी देखा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, अक्षरों में कितनी ताकत होती है। अगर वे सही ढंग से मिल जाएं तो बहुत सारे नए और सार्थक शब्द बना सकते हैं। आपने शब्दों का काम किया और हमने भी आपको शब्दों से ही जुड़ा हुआ एक काम करने के लिए कह दिया। लेकिन सारे बच्चे अपनी कहानी भेजना मत भूलिएगा। आपकी कहानी की प्रतीक्षा करेंगे। और इंतजार कहाँ करेंगे? इंतजार करेंगे इस पते पर। हमारा ईमेल आईडी है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पर अपनी कहानी जरूर भेजिएगा। कहानी क्या भेजनी है? कहानी तो ये भेजनी है कि मान लो अगर हवा ने कहा होता कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो बताइए कहानी में क्या होता। मैं आप सब की कहानी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: माहवारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। माहवारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। माहवारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महामारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: करवे।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: म्यूजिक, देसी ट्रैप, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी, लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: mixing in the house.
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती है और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा, और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है, और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती, और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश,

0: उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
1: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
3: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी आरएनटीसीपी नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मुझे प्लीज माफ कर दो.
2: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती.

0: मिस्टर दुष्यंत, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेल, इट रियली हर्ट्स।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का

0: विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: Hi, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM.
3: ऑडियो क्रेडिट्स परफॉर्म्ड बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, रिटन बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, कंपोज्ड बाय बंजारे, म्यूजिक प्रोडक्शन बाय रॉनी। सो लेट्स एंजॉय इट ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।